आकाशवाणी इम्फाल हौजिक संदोक चरी रेडियो क्लास चमरी यांखई माथोइसु बतांकक्ता क्लास सिक्स की हिंदी लेसन नंबर फोर थौरमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंबांगलुइनना संदोक चबनी

0: जेम्स, जेम्स
1: जी पापा,
0: आ जाओ।
1: जी पापा,
0: आज की तुम्हारी कहानी किस विषय पे होगी?
1: आज तो घरेलू पशु यानी कि घर में पालने वाले जानवर के बारे में बताई।
0: बिल्कुल, जानवर ज्यादातर प्राकृतिक रूप से जंगलों में पाए जाते हैं। मनुष्य सभी जानवरों से सबसे बुद्धिमान है, इसलिए मनुष्य सबसे सर्वश्रेष्ठ है।
1: ऐसा क्या?
0: हाँ, मनुष्य अच्छी तरह जानते हैं कि जंगलों में रहने वाले जानवरों में से कौन सा जानवर किस काम आ सकता है, इसलिए मनुष्य कुछ जानवरों को अपने घर में रखकर अच्छे आहार खिलाकर उनसे लाभ लेते हैं।
1: पापा, क्या हम

0: हमारे 3 गायों से लाभ लेते हैं।
1: हाँ, हम उनसे भी फायदा लेते हैं और हम उन लोगों को निरोग और साफ सुथरा रखते हैं। मैं रोज गौशाला साफ करता हूँ।
0: वो तो मुझे भी पता है।
1: हाँ, जहाँ हम उन्हें रखते हैं, उनके गोबर और गौमूत्र को हम अपने बगीचे में डालते हैं ना।
2: बेटा, मैं दूध ला रही हूँ।
3: ये लीजिए आपका दूध।
1: हाँ हाँ, दे दो।
3: और ये लो बेटा तुम्हारा।
0: जी माँ।
3: तुम्हारे दूध का ग्लास तो बड़ा लंबा है, इसको पूरा पी लेना है तुम्हें।
0: हाँ हाँ माँ, पूरा पीऊंगा।
1: घर में पाले हुई गाय की दूध तो बहुत स्वादिष्ट है, अगर किसी से लिया तो इतना स्वादिष्ट नहीं होगा।
0: वो क्यों पापा?
1: ज्यादा लाभ हो इसलिए। जैसे कि मान लो हमारे पास 3 लीटर दूध है और अगर उसमें आधा लीटर पानी मिला दे तो वे कुल मिला के 3.5 लीटर दूध बन गए। तो आधे लीटर दूध का फायदा हुआ है ना।
3: अब देखो बेटा, पापा के साथ पढ़ाई जारी रखना, मामा ये ग्लास धोने जा रही है।
1: जेम्स, तुम्हारा विषय घरेलू पशु था ना?
0: हाँ पापा।
1: तो सबसे पहले गाय से शुरू करते हैं।
0: जी।
1: गाय है ना घर में पालने वाले एक पशु है, तो वो घरेलू पशु बन गए।
0: पापा, गाय कहाँ कहाँ पाया जाता है?
1: हाँ, गाय संसार में सब जगह पाए जाती है। ये हिंदुओं का एक पवित्र पशु है। गाय बहुत ही कॉमन और सौम्या होती है, लेकिन जब कोई इसके बछड़े को परेशान करते हैं, तो वो उसे सिंगों से वार करती है।
0: वो तो हमारे गाय से पता चलता है। और बताइए पापा, गाय के क्या क्या लाभ है?
1: गाय एक बहुत ही उपयोगी पशु है। वो दूध देती है जो अभी अभी हमने पिया।
0: हाँ।
1: ये बेचकर घर गृहस्थी चलाते हैं। उनके चमड़े से जूता, बैग, जैकेट आदि बनाते हैं।
0: इतना सारा?
1: हाँ, कुछ लोग तो उसके मांस भोजन के रूप में खाते हैं। और बैल खेत में हल चलाता है, वे कृषि कार्य में बहुत काम आता है, इसलिए मनुष्य इससे बहुत प्रेम करते हैं।
0: क्या भैंस और गाय दोनों में कुछ समानताएं हैं पापा?
1: हाँ, वो भी एक घरेलू पशु है। बुजुर्ग कहते हैं कि भैंस का दूध गाय के दूध से अधिक स्वादिष्ट होती है।
0: ऐसा?
1: अधिकतर भैंस का रंग काला होता है, कभी कभी सफेद भैंस भी मिलता है। गाय की तरह भैंस भी बहुत उपयोगी है। गाय और भैंस दोनों ही एक ही बार में एक ही बच्चे को जन्म देता है। भैंस का सिंग गाय से ज्यादा लंबे और चौड़े होते हैं। वे अधिक समय पानी और कीचड़ में रहना पसंद करती है। वे दूध देने के साथ खेतों में भी काम करते हैं।
0: अच्छा।
1: लेकिन गाय तो पानी में रहना पसंद नहीं करती।
0: क्या भैंस के चमड़े से भी गाय के चमड़े की तरह जूते, बैग और जैकेट बनाते हैं पापा?
1: हाँ, बिल्कुल बनाते हैं। गाय और भैंस दोनों ही समान रूप से मनुष्य अपने चीजें बनाने में प्रयोग करते हैं। भैंस तो बहुत ताकतवर है। जो काम एक जोड़े बैल करते हैं, वही काम सिर्फ एक ही भैंस करते हैं।
0: ऐसा क्या?
1: हाँ
0: पापा, हमारे टाइगर भूख रहा है, भूख लग गई होगी। अरे टाइगर, तुम भी ना सान रहो, माँ तुम्हारे खाना लाएगी। चू चू चू, मुझे तो हमारा टाइगर बड़ा प्यारा लगता है। जब भी मैं स्कूल से वापस आता हूँ, वो जान लेता है और दौड़कर मुझ पर कूद पड़ता है और खेलता भी है। ये तो मुझे बहुत पसंद है।
1: हाँ, देखो सभी जानवरों में से कुत्ता सबसे वफादार जानवर है।
0: वो तो मालूम है।
1: जब भी कोई अजनबी या कोई दूसरा जानवर आने की भनक लगे तो वे भौंक कर भगाता है। उसकी सुनने और सूंघने की इंद्रिया अनेक जीवों से

0: अधिक देर से।
1: पुलिस वाले, चोर, डाकू आदि पकड़ने में कुत्ता इसलिए इस्तेमाल करते हैं ना,
0: हाँ,
1: कि उसकी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है।
0: बिल्कुल।
1: हमारे स्कूल के मास्टर जी को इसके बारे में बहुत कुछ पता है।
0: अच्छा।
1: उन्होंने हमें प्रशिक्षित कुत्ते की एक मजेदार कहानी सुनाई थी जो बहुत प्यारी है।
0: अच्छा।
1: कहते हैं कि एक बार उसके मालिक अस्पताल में भर्ती हुआ था। तो जब तक उसके मालिक ठीक होकर नहीं लौटते, तब तक वे बिना कुछ खाए पिए अपने मालिक के इंतजार करता था। कितना प्यारा है ना पापा?
0: हाँ, अरे तुम्हें तो बहुत पता है, इसलिए तो तुम लोग सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं बल्कि और भी बहुत सारे ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं ना।
1: वो तो है पापा।
2: अरे जेम्स, तुम्हारे पापा को तो गृह प्रवेश में जाना है, भूल गए हो आप?
0: अरे मैं तो भूल गया। अच्छा हुआ तूने याद दिला दिया, मैं तो बच्चे के साथ पढ़ाई करते करते भूल गया। अब कितना बच रहा है?
2: देखो अभी भी समय है, बस याद दिला रही थी।
0: क्या आपने खाना बना लिया?
2: जी हो गई, आपकी तैयारी के लिए मैंने बाथरूम में पानी रख दी है, कपड़े भी निकाल के रखे हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो तुम थोड़ी देर के लिए अपने बेटे के साथ बैठो, मैं चला नहाने।
2: जी हाँ, मैं भी बेटे के साथ आराम से बैठती हूँ। बेटे कहाँ तक पहुँच गए?
1: माँ, कुत्ता तक पहुँच गया, अभी बाकी है। वफादार होना, तेज सुनना और सूंघना, वो सब हो गया।
2: हाँ चलो, अब कुत्ता भी अन्य जानवरों की तरह उपयोगी है। प्रशिक्षण देकर कुत्ते को सर्कस में प्रयोग करके पैसे कमाते हैं लोग।
1: ऐसा भी है?
2: हाँ, और कुतिया एक ही समय में 4 से 5 पिल्लों को जन्म देती है, कुत्ते के लिए इतना ही। अब कौन सी घरेलू पशु के बारे में बताऊं?
1: माँ, अब बिल्ली का करते हैं। हमारे भी मिनुचा है ना, वो भी इतना प्यारा है।
2: हाँ,
1: तो बिल्ली के बारे में करते हैं।
2: हाँ बहुत प्यारा है, उसे ना मिनुचा खाना खा लो मम मम कह के बुलाती हूँ तो वह लार तपककर मेरे पास आती है।
1: वो तो मुझे पता है माँ।
2: बिल्ली तो कुत्ते की तरह प्रशिक्षण नहीं ले सकती ना, बिल्ली एक ही समय में 3 से 4 बच्चे जन्म देती है।
1: माँ, हमारे मिनुचा तो मैफू के पास बैठकर खर्राते मारकर सोते रहते हैं, है ना?
2: हाँ, तुम भी ना। सोते हुए बिल्ली को गर्माहट बहुत पसंद है, इसलिए तो वह तुम्हारे पैरों की गर्माहट के पास कभी कभी सोती है।
1: माँ, मुझे तो मिनुचा से ज्यादा टाइगर प्यारा लगता है।
2: देखो बेटा, आप भी थक गए होंगे, टाइगर के साथ थोड़ा खेल लो, मैं भी तुम्हारे पापा के जाने की तैयारी करती हूँ।
1: जी माँ। अरे ओ टाइगर, टाइगर, टाइगर, तुम्हें तो पापा ने बंद कर दिया, बुरा लगा।
2: बेटा आ जाओ बैठते हैं, पापा चले गए।
1: माँ, पापा किसके गृह प्रवेश में जा रहे हैं?
2: परोस के ताऊजी अहंजाओ के गृह प्रवेश हैं, इसलिए वो जा रहे हैं। बहुत बड़ा घर बनाया है उन्होंने, अगले साल उसका बड़ा बेटा शादी करने को जा रहा है।
1: ओ माँ, वो घर तो मुझे भी पता है, कहा जाता है कि उसका बेटा MCS है। मैं भी परी होकर MCS अफसर बनना चाहता हूँ।
2: मेरा बेटा MCS बनना चाहते हैं? क्यों नहीं, मैं हूँ ना। मेरी बात ध्यान से सुनो, उस पद के लिए तुम्हें खूब मेहनत करनी पड़ेगी और उसके साथ साथ आत्मविश्वास भी रखनी होगी तुम्हें। अभी तो तुम बच्चे हो, जब बड़े होंगे तब सोचेंगे।
1: हाँ माँ, मैं तो खूब पढ़ाई करूँगा ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊँ एक बड़ा अफसर बन सकूँ। हमारे गुरुजी कहते हैं कि उसके लिए मुझे कोचिंग करनी होगी और परीक्षा देनी।

0: होगी।
1: सही कह रहे हैं तुम्हारे मास्टर जी, लेकिन तुम्हारे लिए तो अभी बहुत समय बाकी है, अभी तुम्हारी कहानी जारी रखते हैं। तो बताओ कौन सा घरेलू पशु बाकी है?
0: सिर्फ एक ही बचा है, बकरी का, वही सुना दो।
1: बकरी?
0: हाँ
1: ठीक है, बकरी भी एक घरेलू पशु है, वह भी बहुत उपयोगी पशु है। कुछ लोग तो इसे पैसा कमाने के लिए पालते हैं। ये तो गाय और भैंस की तरह बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा है।
0: हाँ, हाँ,
1: इसका शरीर पतले रुओं से ढका हुआ है।
0: हाँ,
1: उसका सींग भी होता है, ज्यादा बड़ा नहीं।
0: वे क्या क्या क्या खाते हैं?
1: बकरी के जो मालिक हैं, उसको धाना पकाकर खिलाते हैं। वे घास और झाड़ियों की पत्तियां भी खाते हैं। जो चीज अन्य पशु छोड़ देते हैं, बकरी उसे चुन चुन कर खाती है।
0: ऐसा?
1: उसमें खाने लायक चीजें चुनने की एक विशेष बुद्धि है। गाय और भैंस की तरह बकरी भी दूध देती है।
0: ओहो।
1: उसका दूध सबसे उपयुक्त और लाभदायक होता है, इसलिए सबसे महंगा है।
0: माँ, मेरा एक दोस्त है, जब मैंने उनसे पूछा कि क्या तरकारी खाया, तो उसने कहा कि मटन खा के आया हूँ। इसका क्या मतलब हुआ माँ?
1: देखो, मणिपुर में भी मटन एक पसंदीदा खाना बन चुका है। उसके मांस बहुत महंगे हैं, बहुत सारे लोग इसे पालने भी लगे हैं। अब चलो, तुम भी थक गए होंगे।
0: हाँ माँ।
1: और तुम्हारा ये पाठ भी समाप्त हो गया होगा। हम
0: हाँ।
1: दोनों खाना खाते हैं।
0: जी माँ, खाते हैं। अगली बार नया विषय पढ़ा देना।
1: हाँ चलो खाना खाते हैं।
0: हाँ हाँ चलो चलो।

एक एंटरटेन सु बगी में एकता हुईडोम ना बोई न सक पा मतमी सही मता बीरे आकाशवाणी फाल हाउजे एव की पुंग तरे तारे संदूक चरी खोंजल नाचों।

सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। ये है ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज बैठी है। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा

多的要求吧，我碰他不得安托嘞。आसाम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमन हायरी महाकी सरकार ना मियाम ना सरकार की ऑफिसिंग द तंगाई फदना लाखपुगी चांग हंथानबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंगलान मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस हाइबदु मंगफाउ न हनबा कन होनरी कामरूप तंगरांग डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर की इंटीग्रेटेड ऑफिस अमा हांगदोपद डॉक्टर सरमन हाय सरकार ना फना कन होनरबजु हौजिक फाउब सेक्रेटरीट द फाइल मयाम अमा पंदन लेरी खुदोंग सादब आसी कोनबा सर्विस मखल कया अमा डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सिंग की ऑफिस द ट्रांसफर टोखरे ताबिरिबा पावसिया कसबानी इंफाल दगी केंद्र की मंत्रिमंडल ने लुपा कोटि लिसिंग त्रौम दै हेन संगदब प्रोजेक्ट मंगा अयाब पीख्रे प्रोजेक्ट सिंग अदुगी मनुंग द रेलवे प्रोजेक्ट मरी अमसुंग हाईवे प्रोजेक्ट अमा याउरी न्यू दिल्ली द मंत्रिमंडल की मिफम लोयरब तुंग द इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्री असनी बैष्णोन हाय केंद्र की मंत्रिमंडल न राइजा मरी नोंगसु बेंगोल ओडिशा तमिलनाडु अमसुंग आंध्र प्रदेश याउना सटगदब रेलवेज की मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट मरी अयाब पीरे महाकना हाय लुपा कोटि लिसिंग मापन चामरी यांखैरोम चंगदब प्रोजेक्टिंग असी सेनबा सही इसिंग अनि कुंथ्रा कुंथ्रा माथोय फाउबदा लोसिनब पांदम थामली श्री बैष्णोन हाय बिहार की नेशनल हाईवे कुनिथोय की मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सोनबर सा सेक्शन लेन मरी द अंथोकनबजु मंत्रिमंडल ना अयाब पीरे मसी की चंगदब अपुनब सेनफम ना लुपा कोटि लिसिंग अहुम चंगा मरपुदरा रोम ओयगनी इंडिया सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल की मरी सूब मिफम हसी सिंगापुर पांथोक लगनी मिफम अदुदा भारत की माइकेदगी सेल थुम मंत्री निर्मला सीतारमन मपान थौरम मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ललोन इतिक अमसुंग उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमसुंग ललोन इतिक उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स अमसुंग आईटी की राज्य मंत्री जितिन प्रसाद शरुक यागनी नाक्सेल मंत्री राजनाथ सिंह नंगासी न्यू दिल्ली जापान की नाक्सेल मंत्री सिंजीरो कोयजुमी का वारी सानरगनी मिफम असिना नैबाक अनिगी मरक्त लेनरी बा ngaksel gi mari lalong gi oina thamnari ba thaja ba masung tengbang pina ba hengat han ba ga loina na bharat pacific lamdam da tangdul leita ba masung asoi angam thon da ba gi phibam hena phagan ba ngamlagani haina panari बांग्लादेश तंगासी राष्ट्रपति की मिखल पांगथोक लगनी लॉ मेकर सिंह ना सरकार पारिब बीएनपी की लुसिंगब मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर अमसुंग दोल तरामाथोय चुंगचिनब विरोधी की मिरेब कर्नल ओली अहमद की मरक्ता राष्ट्रपति ओयगदब मिसक अदु खनगनी राष्ट्रपति की मिखल असी सही कुंथ्रा मंगा की मतुंग द आहान बोइन पांगथोकपनी लैबाक अदु की पार्लियामेंट जातिया संसद हौजिक नुंगथिल पुंग अनि दगी निमिदा वायरम पुंग मंगा फाउबा बोत थादनगनी राष्ट्रपति ओइन खलब मिरेब अदु हयेंग निमिदा वायरम बंगा भवन की दरबार हॉल द बांग्लादेश की अनोखा राष्ट्रपति ओइना वासक लौगनी अरोबद मरुब पाव अमो मणिपुरी लोल भारत संविधान की निपान सूब सेदूल चनखीब निशिंगना कुंथ्रा मंगा सूब मणिपुरी लोल की नुमित निशिंग अनी कुंतरु पांथोली नुमित निनी चथगदब भारत की अवांग नोंपो लमदंगा साउथ ईस्ट एशिया लेबाक सिंगा सेल थुंगी मरी फगलहनबा सेमिनार अमा मणिपुर यूनिवर्सिटी द गसिदगी हौख्रे केंद्र की मंत्रिमंडल ने लुपा कोटि लिसिंग तराहुम द हेन चंगदब प्रोजेक्ट मंगा अयाब पीख्रे अमसुंग बांग्लादेश तंगासी राष्ट्रपति की मिखल पांगथोक लगनी हौजिक नुथिल पुंग अनिदगी निमिदांग वायरम पुंग मंगा फाउबा बोत थादनगनी पाउलोइजरे

0: हेलो
1: हेलो,
0: गुड आफ्टरनून मैडम.
1: गुड आफ्टरनून, कनाओ बिरबनो.
0: ओ आई ngai khung nok de gi loi da
1: ngai khung khunau de gi loi da ngai bi hai bi ba.
0: ओ
1: होय होय, इमा सुमा सिसे हान ब्रो.
0: ओ मसी गा अनि र ति सुरे फांग बा ना हा मुति आ हा म फांग मु ओ ग ज आई मजे हाइनिंग म दि आम लाई ब को.
1: हम्म,
0: आई ना कनो गी खोय गी हा.

0: हेलो, हेलो, हेलो,
1: हेलो
0: ताबी ब्रो,
1: हेलो।
0: हेलो ताबी रब्रो।
1: अरे अरे
0: गुड आफ्टरनून लेडीज के थोर हमने कना हुई भी रबनो होय
1: बेडा मैं इन्ना बोलती हूँ हमने भी ले मुझे
0: करी वाफ़म पुकत पी गनी ताक पियो कनागुंब खरदी वाही कहाय तारे थोरम सिदा सरुक यारगा वाफ़म कया थमनबा हाइदना होनजरगासु फंगदबा अदुमग यावे अदो लाइबक फबा हाइगद्रा आइगी ओइनासु फंगजबसिदा वाफ़म खरदंग थमबिरगादि आम नुङाइनी तो पक्के सुले इतर ब्रो थम भी ना बा
1: लाइक
0: तेरा मैं थम वाली तेरा आदो होय होय ठगे चली
1: इसलिए ना
0: कौन तारु जो कमाई तेरी नो ना होय आई ड्यूटी ता दबा गिनी होय अदो दी अतो पक कोई की थोरम ताबीरी बसेंगे लगता गी कुदों चाबा मुंह पीरे से को ठगे चली

0: हेलो हेलो हेलो हेलो
1: हेलो
0: गुड आफ्टरनून लेडीज के थौरम ने कना ओइ बिरबनो
1: आई नेल कुची अवांग का चाहिए कना बम तारे ने मिटा
0: होय गीतारे हाय बिबा
1: आ मुक्तारे
0: मुक्तारे
1: आ
0: होय होय कनी वाफम पुखत पिनिंग बनो
1: मसिस हेलो हेलो
0: हेलो या ने रेडियो दो खतंग लाप थोक पिरो
1: आ लाप थोक पिरो लाप थोक सेरे ना मेरा आई ने ने मांदे हदे मिंग को खतंग ने जो को बिन
0: हाय बिरो हाय बिरो या ता बिरो
1: मिदा
0: ता जरे
1: ओ स्माइट आ ते फोन जे अनिय की सखे सी हो हम चोरी ने बा
0: होए
1: नम नम नम तुम चार तो तो तुम चार तो तो बा I think I see the salary and harare, I don't want to do a hand crazy method from bar.
0: Mhm.
1: I never told you that, my etabu that.
0: Hoi hoi.
1: I believe they do, I do, and we start, I didn't, but they give me time, and we just want to come again. I do. No friend, no friend, with our company, I'm now more aware of whom I'm that, than no thing to do.
0: Mhm.
1: I know my wife said, I do not see the thing, I see your homework, you're going with that.
0: ओ फंगबसे सोमना
1: आ फंगबसे आदु इसाई देदि से फंगो फंगदा
0: ओ होय इसाई गिदा सोमु फंगबा ओइबियु
1: आ
0: आदु दे आतो पवा फम लेटर ब्रो
1: तो को फंगबु इसाई जो फंगबो को पादु बगिया दगि आंगासिगि लीला जे आं नङाय आंगासिगि लीला दुना आ थाग मयां बु थागा सरी हाबु दो
0: आदु होय थागा चेरि मयां बु थागा चेरि दो होय
1: आ आदु जे ता अपरि आं नङाय आदि मरांगि alamanda ma ma masak ini ma palam tu lagi ma ma pani ni sudah wah lagi tu. Tu si antara saya kerja ni, dia tu bi program tu, nongar tu nongar pun jangan makai bau git program.
0: Hoi hoi.
1: Tu kerja dia dia tu kelas tu gua.
0: Mhm.
1: Ada yang orang tu arunga, hari sabtu si tadi aku undang gua.
0: Mhm.
1: Tak nampung tak, saya am nampung saja, am hajar mungkin nampung saja tu wang pang deh.
0: Hoi hoi. Chadok zari bat horam sing se tabiram basen nungay jay.
1: Doiram gari na zar fangguan is yang nungay ruan is.
0: Hoi.
1: Rangji khonche nukhe nukhe nukhe tawamay amdasun hadikta tu panggay yomi taiba ori sana budo.
0: Mm-hmm.
1: Eh nungay hiya tawa da.
0: Hoi. Aduma gaya tana phone tau biro. Mane mane.
1: Matung da mu hajera gaya tu eishai khanggay yong ta panggaya di khamene atopo kona zu shang kuyya gaya mida.
0: Hoi hoi. Panggu ibi yu thawram sing saru kya biro. Mm-hmm. Oh, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
1: I'm
0: going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the live phone-in program. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Pangki driver sing hai batare ano bu sing adumak phone tau biro wari sana duna adum na khoida ba manipuri film sei khan bagi khudong cha bada lobi yu nung tilpung mari minute kun tha manga
1: hello me dangu tanu
0: good afternoon kana oi biro bano
1: madam ai tinga mai bache patile ka ye susla ka oi me dam
0: hoi Susila, kari wafam pukat pining bano tak piu?
1: Madam, ay na hajar ning ba ma hajar gaya na tawja bani ba madam?
0: Hoi, hai piu.
1: Madam, ay na aku yusum, aku

धन्यवाद मेरीना। नमस्कार श्रोताओं, मैं खुराइजम बेबी रोशनी आप सभी श्रोताओं का गीतमाला कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं। और आप सुन पा रहे हैं 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर प्रसारित FM संगाई चैनल से।

तो आज बृहस्पतिवार है और पहले की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत। तो सुनते हैं ये पहला गीत। फिल्म का नाम है जब वी मेट। आवाज़ दिया है उस्ताद रसीद खान ने। बोल फेज अनवर के हैं और संगीत से सजाया है संदेश सांदलिया ने।

अभी आप सुन रहे थे राजी फिल्म से हर्षदीप कौर, विवा शरफ और शंकर महादेवन के आवाज़ों में एक गीत। गीतकार है गुलजार और संगीतकार है शंकर एहसान लोय। आइए अब सुना जाए बॉर्डर फिल्म से अलका याग्निक और सोनू निगम के युगल स्वरों में एक गीत। बोल जावेद अख्तर के हैं और सुरों से पिरोया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं आपने अभी ट्यून किया है आकाशवाणी इम्फाल केंद्र के संगाई चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत और मैं आपकी रेडियो सखी खुराइजम बीबी रोशनी। आइए अब सुनते हैं सिंगम फिल्म से श्रेया घोषाल और अजय अतुल के युगल स्वरों में एक गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम के आखिरी पायदान पर पेश है जिद्दी फिल्म से के एस चित्रा और हरिहरन के युगल स्वरों में एक गीत।

श्रोताओं, गीतमाला कार्यक्रम के लिए अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन बाद में 2:30 बजे आपसे फिर मिलेंगे फौजी भाइयों के दैनिक कार्यक्रम में। मैं आज आप सब लोगों के लिए कार्यक्रम फिल्म संगीत प्रस्तुत करूंगी, तो मेरा इंतज़ार कीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

ताबिरे गीतमाला आकाशवाणी इम्फाल हौजग अमुक ताबिरसे अरिव फिल्म इसई अमदी मतम इसई सिंग मथंग मथंग ओइना खुदोलगे अहानबदा तामिनसे साफा बी फिल्म दगे आइबम श्याम सिंह अमदी अरामबम जमुनागी खोंजेलदा कोनसब इबो चोंने सैरेंगबा अरिबम श्याम शर्मना सैरांगबा इसई

0: 까비리 누비기 더럼.
1: और उसके अंतर्मन की
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले।
3: ना,
2: पिछले महीने तो ली थी।
3: एक और
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
3: बढ़ी है।
2: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
0: आकाशवाणी इम्फाल हौजुगमुक लांथोक्चरी रेडियो क्लास चमड़ी यांखनी थोई सुब तांकता क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट लेसन नंबर 4 थौरमसी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एस समग्र शिक्षा मणिपुर की तेंबांग लोइनना संदोक चब थौरमनी

0: प्रीति, आज की सब्जी और पूरी बहुत स्वादिष्ट बनी है, है ना?
1: कद्दू के साग के साथ तो और भी मजेदार लग रही है।
2: मैंने तो तीन पूरी खा ली, अगर सुबह का भोजन देर से हो तो भी चलेगा।
0: अरे मोचा, हम तीनों ने खाया है, तुम अकेले नहीं हो।
1: ऐसा है तो हम देर तक पढ़ाई करेंगे।
2: हाँ
0: कर सकते हैं। वैसे आज कौन सी कहानी सुनाई जाए?
2: बुआ, आज कोई अलग सी कहानी सुनाइए।
1: सबसे अलग कहानी मैं चुनूंगी।
2: कौन सी?
1: श्रीनिवास रामानुजन। श्रीनिवास रामानुजन के बारे में कहानी सुनाइए बुआ।
2: बढ़िया।
0: वाह प्रीति, तुमने तो दुनिया भर में प्रसिद्ध व्यक्ति को ही चुना है। तो ध्यान से सुनो, श्रीनिवास रामानुजन का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका जन्म तमिलनाडु के इरोड नामक एक गांव में 22 दिसंबर को सन 1887 को हुआ।
2: अच्छा।
0: उनके पिताजी का नाम श्रीनिवास अयंगर था और माता का नाम कोमला तमल था। पिताजी साड़ी की दुकान में किराने का काम करते थे

0: का परिवार ऊंच कुल का माना जाता था, लेकिन वे गरीबी से संघर्ष कर रहे थे।
1: बुआ,
2: वे किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? बताओ ना बुआ।
0: हाँ हाँ बताती हूँ। वो गणित के क्षेत्र में प्रसिद्ध है। गणित में उन्हें भगवान का अवतार माना जाता है।
1: अच्छा,
2: ओह, जिस गणित को हम मुश्किल समझते हैं, उसमें वे महान थे। बुआ आगे सुनाइए ना।
0: हाँ हाँ सुनाती हूँ। उनकी कहानी बहुत मार्मिक है। वे 5 वर्ष की उम्र से ही स्कूल जाने लगे थे।
1: अच्छा,
0: गणित में उनकी बुद्धि बहुत तेज थी।
1: ओह,
0: जब वे 3री कक्षा में थे, तब तक 12वीं कक्षा का पाठ्यक्रम पूरे कर लिया करते थे।
1: कितने विचित्र थे।
0: हाँ वो तो है। वे परीक्षाओं में हमेशा प्रथम आते थे।
1: अच्छा?
0: अपने अध्यापकों से भी अधिक ज्ञान रखते थे।
1: ओ।
0: 12 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने BA स्टार की त्रिगोनोमेट्री की किताब के सभी प्रश्न हल कर लिए थे।
1: ओ, अच्छा।
2: वे तो ईश्वर की देन थे।
0: हाँ ये बात तो है। बिना किसी प्रोफेसर की सहायता के वे कठिन प्रश्नों का हल निकाल लेते थे। उनके ज्ञान पर विद्वान चकित रह गए। सरकार ने उन्हें छात्रवृत्ति भी दी, जिससे उनकी पढ़ाई में मदद मिली।
1: ओ, आगे सुनाइए बुआ, मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ।
0: प्रीति अपने भाई को संभालो, कहीं ये रामानुजन न बन जाए।
1: मैं तो रामानुजन बनना चाहता हूँ। मुझे गणित पसंद है, भले ही मैं कमजोर हूँ।
0: हाँ हाँ हाँ करो करो करो, जो भी बनना चाहते हो। तो आगे सुनो।
1: हाँ,
0: सुख और दुख मनुष्य के जीवन में आते रहते हैं। रामानुजन 10वीं कक्षा का परीक्षा में सर्वप्रथम आए थे, लेकिन 12वीं कक्षा में अंग्रेजी विषय में फेल हो जाने के कारण वे परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गए। फिर उसके फलस्वरूप सरकार की ओर से दी गई छात्रवृत्ति भी रद्द कर दी गई। छात्रवृत्ति का मतलब जानते हो? यानी कि स्कॉलरशिप।
2: क्या बुआ, क्या कह रहे हैं आप? जो पढ़ाई में इतने होशियार थे, गणित में जिनसे कोई भी बराबरी नहीं कर सकता था, वे परीक्षा में फेल हो गए। ये कैसे हो सकता है?
0: वे फेल हो गए क्योंकि उनकी रुचि गणित में बहुत अधिक थी और अन्य विषयों की ओर उन्होंने कम ध्यान दिया। इसके बाद उन्हें गरीबी का सामना भी करना पड़ा। फिर भी उन्होंने अपने प्रयास जारी रखे। मेहनत करना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना मन पूरी तरह गणित की खोज में लगा दिया। फिर गरीबी के कारण पेट पालने के लिए उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन देना शुरू किया। परिवार को खुश रखने के लिए वे लगातार प्रयास करते रहे। वे अपनी जेब में हमेशा एक छोटी सी नोटबुक रखते थे। अचानक अपनी खोज से कुछ याद आ जाता तो उसे तुरंत उसी नोटबुक में लिख लेते थे।
1: अच्छा
2: बुआ, जीवन जीने के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसीलिए उन्हें भी पैसा कमाना पड़ा।
1: हाँ बुआ, बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता, यही सत्य है ना?
0: हाँ सच है, लेकिन वे लोभी भी नहीं थे। थोड़ा सा मिल जाने पर ही वे संतुष्ट हो जाते थे।
1: तो फिर आगे क्या हुआ? आगे सुनाइए।
0: हाँ हाँ धैर्य रखो, सुनाती हूँ। तो सुनो, वे धन और प्रतिष्ठा के भूखे नहीं थे, बल्कि गणित की खोजों के भूखे थे।
1: अच्छा।
0: गणित की खोज करते करते वे कभी नहीं थकते थे। ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो DGS हार्दी उनकी खोजों से बहुत प्रभावित हुए।
1: अच्छा।
0: वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रामानुजन को अपनी गणित की खोजों के लिए इंग्लैंड बुला लिया। अगर हार्दी से उनकी मुलाकात न होती तो दुनिया उनकी महान सेवाओं से अनजान ही रहती।
2: बुआ, रामानुजन तो एक ब्राह्मण थे ना, क्या इंग्लैंड की जलवायु और खान पान उनके लिए अनुकूल था?
0: प्रीति तुम्हारी बात सही है, रामानुजन अपने धर्म को मानने वाले ब्राह्मण थे। इंग्लैंड की हवा पानी उनसे मेल नहीं खाती थी। खान पान में भी बहुत अंतर था। अधिक

0: आराम और ठीक से ना खाने के कारण वे बीमार पड़ गए। वहाँ के प्रोफेसरों ने उनका अच्छे अस्पतालों में इलाज करवाया और उनका अच्छा ख्याल रखा। उपचार से वे थोड़े ठीक हो गए। उसके बाद उन्होंने दिन रात एक करके गणित के कठिन से कठिन प्रश्नों का हल निकाला। आश्चर्य की बात है कि कम उम्र में ही वे रॉयल सोसाइटी के फेलो बन गए।
1: बुआ, ये तो भारतीयों के लिए गर्व की बात है ना?
0: हाँ मोजा, सभी भारतीयों को उन पर गर्व है। रॉयल सोसाइटी का फेलो बनना बहुत बड़ा सम्मान है। वे इस सम्मान को पाने वाले प्रथम भारतीय थे।
1: ओह अच्छा।
2: बुआ, रामानुजन के बारे में हमें कुछ और जानना है। रामानुजन के जीवन के बारे में और कुछ बताइए।
1: हाँ,
0: बताती हूँ। रामानुजन मद्रास में रहते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए वे हमेशा गणित की खोजों में पूरा समय नहीं दे पाते थे। सौभाग्य से उन्हें मद्रास में एक छोटी सी नौकरी मिल गई। वे अपनी माँ के साथ रहते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। घर पर उनका धार्मिक विश्वास बहुत मजबूत था। काम से फुर्सत मिलते ही वे गणित की खोजों में लग जाते थे। उसी में उन्हें खुशी मिलती थी। बाद में उनका विवाह भी हो गया था।
1: बुआ, अगर इतनी कठिन गणित के प्रश्नों का हल करने के बाद भी कोई उन्हें ना पहचाने तो इसका क्या लाभ? उनकी खोजों को किसी ने नहीं पहचाना क्या?
0: मोचा, तुम्हारी बात सही है। मद्रास में उन्होंने अपनी गणित की खोजों को एक अफसर को दिखाया।
1: हाँ?
0: तब उस अफसर को उनकी गणितीय प्रतिभा का एहसास हुआ। उसने रामानुजन की असाधारण प्रतिभा का परिचय जीएस हर्दी से करवाया। तभी से उनकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू हुआ। इसके बाद वे इंग्लैंड गए। ये बात मैं पहले भी बता चुकी हूँ।
1: हाँ बुआ,
2: आपने बताया था वहाँ से उनकी गरीबी थोड़ी कम हो गई थी ना?
0: नहीं, उन्हें अपने काम से अच्छा धन मिला, लेकिन उन्होंने सुख सुविधाओं पर खर्च करने के बजाय समाज कल्याण के कामों में लगा दिया। वे सादगी भरा जीवन जीते थे।
2: बुआ, उन्हें टीवी की बीमारी हो गई थी ना?
0: हाँ, उन्हें टीवी हो गई थी। उस समय इसका उचित इलाज नहीं था, इसलिए वे बीमार ही रहे। फिर वे भारत लौट आए, लेकिन उनकी हालत और खराब हो गई। विश्व प्रसिद्ध महान गणितज्ञ रामानुजन की मृत्यु 26 अप्रैल 1920 को हुई।
2: तो बुआ, क्या उनकी किताबों का प्रकाशन हुआ था?
0: हाँ, हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद उनकी गणित की खोजों को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया।
1: बुआ,
0: हाँ बोलो।
1: वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे।
0: बिल्कुल।
1: अगर वे ज्यादा दिन तक जीवित रहते तो गणित के क्षेत्र में और बड़ी खोजें करते।
0: मोचा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। ईश्वर ने उन्हें लंबी आयु नहीं दी, लेकिन उनका नाम सदा अमर रहेगा। जो लोग जीवन भर कुछ नहीं करते, उन्हें कोई याद नहीं रखता।
2: वाह बुआ, आपके उत्तर तो लाजवाब है।
0: इस प्रकार महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुनने से हमें प्रेरणा जो मिलती है।
1: हाँ?
2: अच्छी लगती है और मैं भावुक भी हो जाती हूँ।
0: चलो, अब बहुत हो गया। आज के लिए यही समाप्त करते हैं।
1: जी बुआ।
0: अगली बार मैं तुम दोनों को एक और मजेदार कहानी सुनाऊंगी। तुम लोगों को माँ का हैप्पी बताना है ना?
1: हाँ, हाँ, बुआ, हाँ। हाँ।

0: किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? आज का प्रश्न है, रामानुजन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे?
1: अचुंब पाखुम पीबी रख पसिंग की मनुंग दगी लॉटरी तोड़गा खंगत लब महिरोई सिंग दा अहान बमना ओइना लुपा चमंगा अनि सुब अमसुंग अहुम सुब तार बसिंग दा लुपा चहुम अमसुंग लुपा चनी पिजगनी अदोम न पाखुम पीबी रख पदा इसा की मिंग क्लास अमसुंग स्कूल की ममिंग बैंक अकाउंट डिटेल लोइनना डिस्ट्रिक्ट मरिक चुम न इबीरगा एसएमएस की खुठांग दा पिजरीब नंबर 9378120495 ता पाखुम पीबीरो पाखुम पीबीरक मतम दा एपिसोड नंबर इबीरक पा कौबी गनो प्राइज विनर दी नसी दगी चैओल अमगी मतुंग दा लाउथोक सेगनी नसी गी दी मता नसी दा कायनेया थंगनी जरी पिना बिरसी
2: ताबिरे रेडियो क्लास चमरी यंखै नि थोई सुब तांकक दा क्लास 6 हिंदी सब्जेक्ट लेसन नंबर 4 Thauramasi, Department of Education as Samagra Shiksha Manipurgi, Tengbangaloinana, Sandok Chabathauramni.
3: Iramdam Irei Chagini Khanna, Naha Ahan Khaidana, Matam Matam Gitokna Rakpa, Miyoi Kaya, Ngasi Aikhuina Thingari.
4: Makal Makal Gi Election Lakpada, Anuba Ariba Candidate Singh Changyengi Damak Tholuktuna, Laibak Sembada, Achoba Saruk Yanaba Honari.
3: Micham Aikhoi Mayam Nasu, Makhoi Bukananu. Kari thabak tau krabage aduga, kari tau rakani hai basidi khangningli.
4: Lakaduri ba Manipurgi election da, candidate ubiningli ba singhi wakalwon phongtok chanaba amadi, miyam da masak tak chanaba, minit ohum dagi manga phawwa, radio gi kuthang da sandok naba matam thamjari.
3: Sponsor tau duna sandok chagadaba, thauram sikidamak, Akashvani Imphal ki commercial section da tanabiyu.
2: Akashvani Imphal, hauziga muk tabirasi, matamisai, matang-matang oina. Kudul gyahan badata minasi, Bachaspati Mayum Vidyapati Sarmagi Khonjelda, Bijayanta Kumar Sarmana Sairingba, matamisai. Nungshigi laina layongdi, narabatana, khangbani.

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: आकाशवाणी इम्फाल हाउसिंग विभाग की पुमापल तारे मणिपुरी दपाओ ताविरसे।
5: आकाशवाणी इम्फाल निंथोखोंजम सुनी न पाउ पाजरी। मुख्यमंत्री युमनाम खेमसाना हायरी मणिपुर द एनआरसी चनहनबगी वाफम सेप्टेम्बर 2 द हगोदोरिबा मणिपुर विधानसभागी मिफमदा खननाबा सरकारन बुथोकलगनी। गसी मुख्यमंत्री की सेक्रेटरीता सेंसस टोटिंग द एनआरसी हाना पांगथोंना बदाबी तोरिबा महिरुइसिंग बिहुत कांगबु अमगा उनाबदा मुख्यमंत्री नहाय सरकार रसिनसु मणिपुर द एनआरसी चनहनबबु सगोतुना लाकली। जॉइंट ट्राइब काउंसिल मणिपुरना नेशनल हाईवे सिंगी इनपुइ लियांगमई रोंगमई मसुंग जेमी नगा फुरुप सिंह ने खुंदारी मफम सिंह फाउदुना पोचे पुब गारी सिंह चथु चिंग तब अथिंग थम्रे काउंसिल चिरोल कांगपोपी जिला की नमदिलोंग संगसिन मियाम की खोंजन सिक्योरिटी फोर्स चथरीब थवोंग यानिंगदब फोंदोंगतुना खोंथांग लौरपनी। सेनापति डिस्ट्रिक्ट पुलिस मियोय अनी कानी किलोग्राम निफू मंगा कोनना खोंगनेम थाना खुल दगी फारे। पुलिस की पाउना हाय सेनापति डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना अचेत ओक सिंग चेक तब की थबक चथबदा आईने यादव पोलम सिंह फागत कीबनी। पोलम सिंह कोनना फारब मियोय अनी अदु कांगपोपी पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा इरंग पार्ट वन दगी नी मखोय दगी सेल लोइना लुपा लिसिंग तरा चक्का मरी पानब गाड़ी मा फागले। अमरोमदा जिरीबाम जिला की बराक तुरेल मनाक्त लेबा टीपी दोर मसुंग चौधरी खाल खुल अनी अकोयबद थीबोम की थबक चथबदा WY टेबलेट नि चिंगना पोलम किलोग्राम मापन हेना हेरोइन पाउडर ग्राम सनी रोम पुदुना चलंब मियोय तरुक फारे हायरी मखोय सिंग अदु बराक तुरेल दा ही तोंगदुना लाखिबनि हायरी। कुंथ्रा मंगा सुबा मणिपुरी लोल गि निमित गसि मणिपुर पाक सना पांगथोंनकी इंकुमजा लिसिंग मचमापन मफुत्रा नि थ्वगि गसि गि निमित असिदा मणिपुरी लोल

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम हर सिंगार में आपका स्वागत है इस्तकबाल है अभी आपके साथ है आपका ये दोस्त शमीम खान दोस्तों कहते हैं कि मोहब्बत अगर जिंदगी में रंग भरती है तो जुदाई उसी मोहब्बत को एक गहरी आवाज भी देती है मोहब्बत में मिलना खूबसूरत है लेकिन कभी-कभी किसी का इंतजार करना भी तो मोहब्बत ही तो है कभी किसी की आवाज याद आती है तो कभी किसी का भेजा हुआ कोई पैगाम कोई संदेश या कोई खत कभी साथ में ली गई कोई तस्वीरें तो कभी सिर्फ एक नाम याद आता है और फिर अचानक रेडियो पर कोई गीत बजता है और लगता है जैसे बरसों पुरानी कोई शाम हमारे सामने आकर बैठ गई हो तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को जिसमें ऐसे गीत होंगे और उसमें प्यार की मासूमियत भी होगी और उस प्यार को महसूस करने की बेचैनी भी

0: कभी कभी
1: इंतजार, किसी के आने का इंतजार, किसी की आवाज सुनने का इंतजार, एक मुलाकात का इंतजार, और कभी कभी सिर्फ इस बात का इंतजार कि सामने वाला भी हमें उसी तरह याद कर रहा होगा। इंतजार भी एक धुन की तरह होती है, घड़ी की सुइयां चलती रहती हैं, लेकिन दिल दिल वहीं ठहर जाता है। और जब इंतजार लंबा हो जाए तो अक्सर इंसान खुद से ही बातें करने लगता है। और इन्हीं सब बातों के बीच आइए सुनते हैं एक खूबसूरत सा गीत जो शायद इंतजार की ही तो बात कर रहा है।
0: क्या कहा?

0: दोस्तों कहीं मचाई का हाजिर होता है छोटे से अंतराल के बाद।
1: कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर. कार्यक्रम चल रहा है हर सिंगार और शमीम है अभी आपके साथ. दोस्तों, यादों की भी अपनी अजीब दुनिया होती है. कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं लेकिन उनकी यादें कभी भी हमारी जिंदगी से नहीं जाती. एक रास्ता उनकी याद दिलाता है, हवा का झोंका उनकी याद दिलाता है और बारिश की फुहार उनकी याद दिलाता है, तो कभी कोई पुराना गीत उनकी याद दिलाता है. शायद इसीलिए कहा जाता है कि इंसान दूर जा सकता है मगर यादों से दूर जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है. किसी ने क्या खूबसूरत बात कही है, कुछ रिश्ते साथ रहने के लिए नहीं, उम्र भर याद रहने के लिए बनते हैं. तो चलिए अब एक ऐसा गीत सुनते हैं जिसमें याद भी है, प्यार भी है और एक अधूरी सी कसक भी है.

दोस्तों कभी कभी मोहब्बत दिल में होती है लेकिन वो जुबां तक नहीं आ पाती। हम सामने वाले को देखते हैं और बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन हमारी जुबान पर शब्द नहीं आते और हम मुस्कुरा के रह जाते हैं। दोस्तों मोहब्बत की सबसे बड़ी खूबसूरती भी यही है कि हर बात कहनी नहीं पड़ती। कुछ बातें आंखें कह देती हैं, कुछ खामोशियां कह देती हैं और कुछ गीत वो बात कह देते हैं जिसे हम बरसों में भी नहीं कह पाते। तो आइए सुनते हैं प्यार किए उस खामोश इजहार से भरा हुआ एक खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें रोकर भी पूरी तरीके से हल्का नहीं किया जा सकता। किसी से दूर होने का दर्द भी कुछ ऐसा ही है। जिस इंसान के साथ आपने अपने पूरे भविष्य की कल्पना की हो, उसके बिना भविष्य की कल्पना करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। लेकिन जिंदगी रुकती नहीं, वो चलती रहती है और हम भी चलते रहते हैं। बस दिल का एक हिस्सा वहीं रह जाता है जहां कभी कोई अपना हुआ करता था। आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा गीत।

दोस्तों, मोहब्बत सिर्फ हमें खुश रहना नहीं सिखाती, कभी-कभी मोहब्बत हमें टूटना भी सिखाती है। और सबसे अजीब बात यह है कि टूटने के बाद भी इंसान उसी रिश्ते को बुरा नहीं कह पाता, क्योंकि रिश्ता खत्म हो सकता है लेकिन उसमें बिताया हुआ अच्छा समय तो खत्म नहीं होता। इसीलिए किसी से जुदा होने के बाद भी हम सिर्फ ये कह पाते हैं कि जो था अच्छा था। ठीक इस खूबसूरत से गीत की तरह

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ में मोहम्मद जुबैर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य स्थानों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति के कई पहलुओं पर सवाल उठाए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों की उपलब्धता, छात्रों पर बोझ और स्कूलों में इस नीति को लागू करने का तरीका शामिल है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नवीं कक्षा के छात्रों के लिए सीबीएसई की त्रिभाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। झारखंड उच्च न्यायालय ने आज 11वीं से 13वीं झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा और खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के अंतर्गत नियुक्तियों को रद्द करने के झारखंड सरकार के निर्णय पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक रोशन ने सरकार की परीक्षा रद्द करने की अधिसूचना को चुनौती देने वाली 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग

0: This is Akashvani. Good evening and welcome to Market Mantra. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Kumar.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में कारोबारी खबरों के साथ एक बार हम फिर से हाजिर हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक के मुख्य आर्थिक समाचारों पर।
0: Benchmark domestic stock market indices rebound. Sensex jumps over 600 points. Nifty settles above 24,200. India's core industries grow by 5.4% in July this year on an annual basis. And global crude oil prices rise over 3%.
1: घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए. सेंसेक्स में 600 से अधिक अंकों का उछाल और निफ्टी 24,200 से ऊपर पहुंचा. भारत के औद्योगिक सूचकांक में वार्षिक आधार पर इस साल जुलाई में 5.4% की बढ़त और वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 3% से अधिक की तेजी आई.

0: And before we take our main stories in detail, here is an important disclaimer. The views and opinions expressed by the experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और बढ़ते हैं अब खबरों की तरफ. घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांक आज कई दिन बाद बढ़त के साथ बंद हुए, जिसमें सभी सेक्टर में व्यापक खरीदारी देखी गई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 0.82% यानी 628 अंक बढ़कर 77,538 पर पहुंच गया. निफ्टी 0.64% यानी 154 अंक ऊपर चढ़कर 24,232 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप सूचकांक में 0.4% की बढ़त हुई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक 0.7% ऊपर आ गया. सेंसेक्स ने लगातार 4 दिनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ा, जबकि निफ्टी ने लगातार 7 दिनों की गिरावट का ट्रेंड खत्म किया. इससे पहले अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट के बाद बाजार गैप अप के साथ खुले. दोनों सूचकांक ज्यादातर समय तक एक दायरे में ही कारोबार करते रहे.
0: Benchmark domestic equity indices ended in positive territory today, supported by broad-based buying across sectors. Sensex surged by 628 points, or 0.82%, to close at 77,538. Nifty climbed 154 points, or 0.64%, to settle at 24,232. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained 0.4%, while the small-cap 100 index increased by 0.7%. Sensex curbed its four-day losing streak, while Nifty snapped its seven-day downward trend. Earlier, the markets opened with a gap up following a decline in U.S. bond yields. Both the stock market indices traded within a range for most of the session before ending with favorable gains.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 26 कंपनियों के शेयरों में आज बढ़त देखी गई. सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों में एटर्नल ने 2.3%, कोटक महिंद्रा बैंक और आईटीसी ने 1.6% और बजाज फाइनेंस ने 1.5% की बढ़त दर्ज की. वहीं दूसरी तरफ टाटा स्टील में 0.4%, इंडिगो और एचसीएल टेक में लगभग 0.2% की गिरावट आई, जबकि टाइटन में मामूली सुस्ती देखी गई.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, all the sectors registered gains except hospitals, which dropped by 0.6%. Among the top gainers, realty climbed 1.9%.

0: FMCG as well as focused IT gained 1% and IT added 0.9%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was positive as shares of 2,450 companies advanced, 1,874 companies declined and 225 companies remained unchanged.
1: अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 5 पैसे मजबूत होकर 95.71 रुपए पर बंद हुआ. डॉक्टर एसपी शर्मा, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
2: जी शुक्रिया.
1: एसपी, अगर आज के मार्केट को हम देखते हैं तो कई दिनों की गिरावट का सिलसिला टूटा है. सेंसेक्स और निफ्टी में एक ऐसी बढ़त देखी गई जिसने जरूर निवेशकों को राहत पहुंचाई होगी. आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे बड़े कारण रहे जिनकी वजह से हमें यह बदलाव देखने को मिला?
2: देखिए, ग्लोबली तो बहुत ही अनसर्टेनिटीज हैं जो मार्केट के किसी भी पक्ष में फेवर में नहीं है. क्रूड ऑयल प्राइसेस काफ़ी हाई स्प्रे में है और यूएस का जो टसल है ईरान के साथ उसमें भी जो वो बरकरार है. लेकिन इस दौर में जो भारत में जो इक्विटी का जो अभी हमने देखा कि एक स्ट्रांग रिबाउंड देखा है, तो उसके पीछे एक तो हमारा जो हमारी जो एक कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं और दूसरा जो हमारे फंडामेंटल्स हैं और तीसरा जो एक स्टेबिलिटी हमने देखी है कि इन्फ्लेशन में भी, कि आने वाले टाइम में शायद जो रेट पॉज है वो कंटिन्यू रहेगा, कोई ऐसी संभावना हम नहीं देखेंगे कि इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी हो, क्योंकि इन्फ्लेशन जो एक पहले एक्सपेक्टेड था कि भाई शायद ये 6%, 5%, 6% उससे ऊपर चला जाएगा जिस तरीके के क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे थे, लेकिन अभी उनमें भी जो इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी है वो बहुत ही स्लोली वो सेटल हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है. तो ओवरऑल जो मार्केट्स है वो एक कंसोलिडेटिंग मोड में है और जिसमें जो बायस है अपवर्ड बायस है, जो मार्केट्स है वो किसी भी अच्छी न्यूज़ के ऊपर ऊपर जाना चाहते हैं. लेकिन जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं वो मार्केट को काफ़ी प्रभावित करती है जिससे मार्केट अपना एक पोटेंशियल ट्रैजेक्टरी नहीं ले पाती है. तो कुल मिला के जो मार्केट्स है वो एक रेंज बाउंड स्थिति में है. मार्केट जाके 25,000 के लगभग जाके फिर उनमें कुछ करेक्शन शुरू होती है, फिर लगभग कोई जब 24 से नीचे खिसकने लगती हैं तो फिर वापस कोई रीबाउंड आता है. तो एक ये जो 1,000-1,500 का जो एक रेंज है निफ्टी में वो मार्केट को सपोर्ट कर रहा है और मार्केट को वापस उसी दरमियान रखे हुए है.
1: इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है आगे चलकर? क्या
2: देखिए, इसमें प्रॉफिट बुकिंग ऑलरेडी जो हो रही है, कंसोलिडेशन मोड में है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, चर्निंग होती है, एक सेक्टर से निकल के लोग दूसरे में जाते हैं और कई बार ब्लू चिप से निकल के स्मॉल कैप में जाते हैं, स्मॉल से निकल के ब्लू चिप में जाते हैं. तो मार्केट की जो कंडीशंस हैं, जो उस टाइम पे एक बढ़त आती है कि कई बार बहुत सारे जो ब्लू चिप्स हैं बहुत अच्छे चलते हैं तो लोग प्रॉफिट बुक करके अपना कुछ मिड कैप पर रुक करते हैं. तो इस तरीके से मार्केट का जो ये 1,000-1,500 के निफ्टी का जो अभी पीछे हम 1.5 साल से देख रहे हैं कि उसी रेंज में मार्केट घूम रही है, तो ये एक तरीके से लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर रही है कि मार्केट में कोई मेजर करेक्शन, इतने हालात खराब होने के बावजूद भी ग्लोबल लेवल पे कोई मेजर करेक्शन नहीं आई है, मार्केट में एक संतुलन बना रहा. जब मार्केट्स नीचे जाती हैं तो कोई कुछ पॉजिटिव्स आते हैं तो मार्केट्स वापस रिबाउंड कर लेती हैं, जब मार्केट्स ऊपर जाती हैं तो कुछ ना कुछ उधर अनाउंसमेंट आ जाता है, ट्रंप साहब की वजह से कुछ ऐसी अनाउंसमेंट आती है जो यूएस ईरान के बीच में टसल चल रही है उसको लेके और नेगेटिव कोई न्यूज आती है तो मार्केट्स वहां पे करेक्शन खा जाती है. तो कुल मिला के जो स्थिति है वो एक मैं ये कहूंगा कि एक वॉलेटिलिटी बट बैलेंस्ड approach.
1: Okay.
0: Dr. Sharma, the rebound that you mentioned is also short covering in the markets after a 4-day losing streak. We saw again an uprise in the markets today. DIIs were the net buyers to the tune of 3,538 crore rupees in the equity indices. The story also says that there was a pullback in the US treasuries after a fall yesterday. So we're talking about the 10-year yield on the U.S. Bond. You have the bill notes and bonds, 1 to 6 months, the short-term treasuries, 1 to 2 years as well. There was a pullback today. What is the impact of what's going on in the bond market in the U.S. having on India and India's stock market? Because the national debt of the U.S. has already crossed $40 trillion. So how do you see the

0: 2.9%. Coal production rose by 7.6%. Steel production increased by 2.9%. And refinery products output rose by 2.7% on an annual basis. However, fertilizer production declined by 8%. Crude oil production dropped by 5.3%. And natural gas production dipped by 3.7% on a year-on-year basis.
1: SP, जिस तरह के आंकड़े हमारे सामने आए हैं आयरन और स्टील की बात करें सीमेंट बिजली और कोयले के उत्पादन में अच्छी बढ़ोतरी हुई है लेकिन उर्वरक और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है तो इस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं आपको औद्योगिक उत्पादन के लिहाज से कैसा दर्शाते हैं और मार्केट की आगे की जो रफ्तार उस पर क्या असर डालेंगे ये
2: देखिए जो स्टील में माइनिंग में जो अच्छी बढ़त आई है ये सरकार की जो भी पॉलिसीज जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संदर्भ में कही है या फिर आप जो एक्सप्लोरेशन ऑफ द माइंस इन एन एफिशिएंट मैनर उसमें कही है तो ये सब चीज़ों का भी नतीजा है कि हमारी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज हैं जो कोर इंफ्रा में वो बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ना शुरू हो गई हैं और विजिबल हो गई हैं तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से पहले ये काफ़ी ग्रोथ इसमें अंडरमाइंड था जो कोर इंफ्रा में ग्रोथ बहुत कम आता था तो अभी ग्रोथ एक लेवल से ऊपर उठा है तो आने वाले टाइम में हम समझते हैं कि इसका एक बहुत अच्छा सपोर्ट रहेगा और कुछ खास करके जो आगे जो हमारे जो बेस ईयर्स हैं वो भी रिवाइज हुए हैं तो जिसकी वजह से ये वापस अपने पोटेंशियल ट्रैजेक्टरी में आए हैं लेकिन जो खास करके जो ऐसा जो ऑयल और रिफाइनरी की बात है तो आप देख ही रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पे कितना टसल है और क्रूड के प्राइसेस जो है बहुत ही वॉलेटाइल रहते हैं तो कभी टाइम बहुत अपॉर्चून होता है कि हम रिफाइनरी मार्जिन्स ज़्यादा इंक्रीज होते हैं तो उसका प्रोडक्शन भी इंक्रीज होता है और कई बार जो प्राइसेस बहुत हाई लेवल पे प्रिवेल करते हैं तो ज़्यादा कॉस्टली बाय करना भी फिर वो भारी पड़ता है तो उस वजह से जो एक बैलेंस है वो हम समझते हैं कि तो उसमें वॉलेटाइल रहेगा उसमें ग्रोथ जो है वो हम एक सस्टेंड ग्रोथ नहीं दे सकते उसमें जब तक कि क्रूड के प्राइसेस बहुत अभी आप देखिए कि क्रूड के प्राइसेस पीछे $55 से लेके 100 से ऊपर जा चुके तो डबल और उसके बीच में क्रूड प्राइसेस ने पीछे 4-5 महीने में बिहेव किया है तो इसकी वजह से जो जो रिफाइनिंग प्रोसेसेस हैं उसके ऊपर भी उतना ही इम्पैक्ट जो है आता है
0: डॉक्टर शर्मा वी हैव आल्सो सीन दैट देयर इज स्टिल इम्पैक्ट फ्रॉम व्हाट्स हैपनिंग इन द मिडल ईस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉकेड बिकॉज फर्टिलाइजर प्रोडक्शन यू नीड सल्फर इम्पोर्ट्स फॉर क्रूड ऑयल Of course, and natural gas, we rely on the Middle East for crucial imports for our refineries. But the weightage of fertilizer, crude oil, and natural gas is still 15% of the ICI, whereas the remaining 85% includes iron ore, cement, electricity generation, coal production, steel, and refinery products. And all of that has seen a great increase in its output, which is why we are seeing 5.4% increase in the July figures for the index of core industries.
2: Yes, Arjun, you are right because some sectors have increased very significantly, more than 30-40%, and that's why their weight is also high. As these refinery and crude, they have only 15-16%. So rest of the 85% is growing significant. That's why the growth is coming at 5.4%, which is a great number in the volatile global environment.
0: And the index of industrial production, the factory output, actually went up by 7% last month also. So along with core industries data and IIP, fundamentally the economics of the country in terms of commodities and using the commodities to manufacture and produce final goods is also there.
2: Yes, Arjun, there is a great balance between all the fundamentals like IIP numbers are growing at 7% and core infra at 5.4% and exports, which is very, very important for the growth of the economy and a great correlation with the GDP. Exports are increasing at the rate of 13% during the last 4 months. The average is 13%. Last month in July, merchandise exports grew more than 17-18%. So this is the great growth in our external sector, in our exports, despite the global headwinds, and we are becoming more and more competitive in the global market, and demand for India's products is increasing significantly in the many countries.
1: एशियाई शेयर बाजारों में आज दक्षिण कोरिया का कोस्पी 5.9% के लाभ में था जापान का निक्केई 1.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था आर्थिक मोर्चे पर जापान का निर्यात पिछले महीने 23.2% बढ़ा जबकि सालाना आधार

0: पर आयात में 27.8% की वृद्धि हुई। आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने देश का व्यापार घाटा 634.5 अरब येन रहा। इस खबर से जुड़े दो सवाल हैं। पहला तो ये कि दक्षिण कोरिया का जो मार्केट है उस पे उतार चढ़ाव काफी एक अलग तरीके से ही हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से, एक दो महीने से, और साथ ही जापान से जो सालाना आधार पर आयात में बढ़ोतरी का आंकड़ा आया है ये काफी कुछ कहता है।
1: जी बिल्कुल, आप सही बता रहे हैं, क्योंकि जो एशिया में कुछ ऐसा वॉलेटिलिटी है अभी, कुछ कई बार जो इंडिसेज हैं बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हैं, कई बार बहुत गिरावट आती है, क्योंकि जो ग्लोबल लेवल पे एशिया एक मेजर सप्लायर है। जब जो टर्म्स ऑफ ट्रेड या फिर आप कहेंगे कि जो नेगोशिएशंस है या फिर टैरिफ स्ट्रक्चर है उसमें कुछ भी ऐसे बदलाव की घोषणा होती है तो उससे मार्केट्स के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है, बिकॉज दे आर द मेजर सप्लायर्स टू द एडवांस्ड इकोनॉमीज। सो उसकी वजह से जो हम देखते हैं कि वॉलेटिलिटी, कभी हम दक्षिण कोरिया के इंडेक्स में देखते हैं या कभी फिर हम इधर जापान के उसमें देखते हैं या फिर चाइना में देखते हैं या और जो एशियन कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो, तो जैसे मैंने पहले बताया कि पोटेंशियल हमारे ये जो सभी इमर्जिंग मार्केट्स हैं इनमें पोटेंशियल बहुत अच्छा है, लेकिन जो ग्लोबल लेवल पे जो हेडविंड्स हैं, जो टसल है, उसकी वजह से ग्रोथ काफ़ी लेवल तक अंडरमाइन हुई है। जो मैं समझता हूँ कि जैसे ही पीस एस्टेब्लिश होगा तो इन मार्केट्स में बहुत तेज गति से रिबाउंड करने की समर्थता है।
2: डॉक्टर शर्मा, दी लुकिंग एट द नेट एक्सपोर्ट्स ऑफ जापान, क्लियरली दे हैविंग अ ट्रेड डेफिसिट एज अ स्टोरी is indicating the exports have gone up, but the imports have gone up even more relative to the exports. And when we talk about the Japanese yen, it has now climbed back to 158.55 to the US dollar. Earlier, it was even weaker. It crossed 160. And then there was a move by the US government to strengthen the yen, because the yen is also used for, the carryover trade. So what's going on here between the Bank of Japan, the yen, and what the US is doing?
1: Yes, Arjun, Japan is in a major structural mode, structural revival, and growth is also inching up slowly. And going forward, I believe this structural shuffle will benefit the Japanese economy, because they are now connecting with the many global markets, and to increase the trade trajectory and to become once again prominent in the global trade. So I think in the coming times that will become visible, and economy will rejuvenate to the next level.
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ एक बड़े आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। उन्होंने उन देशों और कंपनियों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंधों की चेतावनी दी है जो ईरान का सहयोग करना जारी रखेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने ईरान को समझौता करने के लिए कई मौके दिए थे लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका अब ईरान को अलग थलग करने का अभियान शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि जो भी देश अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या फिर सरकारी एजेंसियों से ईरान की मदद करेगा उसे भारी आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि इस अभियान का मकसद विदेशों में गतिविधियों के लिए ईरान के वित्त पोषण और सहयोग करने की क्षमता को कमजोर करना है। इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेरी गालिबाफ ने कहा कि जब तक अमरीका 14 सूत्रीय ज्ञापन के तहत किए गए वायदों को पूरा नहीं करता तब तक ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मोज को फिर से नहीं खोलेगा। एसपी, इस बड़ी खबर पर आपके क्या विचार होंगे, क्या असर देखने को मिलेगा, मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा?
1: देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी कंट्री आइसोलेशन में ऑपरेट नहीं करता है। नाउ वी आर इन अ ग्लोबली इंटीग्रेटेड वर्ल्ड, तो अगर यूएस ऐसा कदम उठाता है कि किसी कंट्री का आइसोलेट करने का, तो उसका पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी प्रभाव होगा। अभी हम देख ही रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में एक उस जगह की वजह से पूरा वर्ल्ड इम्पैक्टेड है क्रूड प्राइसेस की वजह से, और अगर ऐसी सैंक्शंस आती हैं तो उनका भी प्रभाव जो है वो किसी एक कंट्री के ऊपर नहीं होगा, वो पूरा विश्वव्यापी होगा, पूरे विश्व के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। और यूएस भी उसमें से पीछे नहीं है, मतलब यूएस भी उसमें शामिल है। यूएस इज ऑल्सो नॉट आइसोलेटेड के और इंसुलेटेड के भी उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं आएगा, सब पूरा ग्लोबल इकोनॉमी इम्पैक्ट होगा। जैसे ट्रंप साहब ने बात की है कि ऐसी सैंक्शंस होंगी कि हम उसको अलग थलग कर देंगे, सो दैट इट्स नॉट पॉसिबल फॉर ए ग्लोबली इंटीग्रेटेड इकोनॉमी जहाँ पे सप्लाई चेन्स बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है।
0: लेकिन मध्य पूर्व में वे हालात कुछ ऐसे बन रहे कि ईरान वैसे ही अलग थलग सा नजर आ रहा है।
1: देखिए, वो युद्ध की वजह से जब भी कोई कंट्री प्रभावित होता है तो अलग थलग नजर आता है, बट अगर आप इकोनॉमिक लिंकेजेस देखेंगे तो वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। हम किसी भी कंट्री को ऐसे उसके ग्रोथ को अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि ऐसी अनाउंसमेंट्स

0: These are not in favor of the world economy. US is the largest economy and US is a responsible economy which provides the direction to the world economic growth. So उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही आगे के जो डिसीजंस है लेना चाहिए.
1: मूविंग ऑन टू द ग्लोबल क्रूड ऑयल मार्केट. ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस रोज ओवर 3% टुडे. ब्रेंट क्रूड वाज ट्रेडिंग 3.3% अप एट $94.61 पर बैरल इन इंट्राडे ट्रेड. West Texas Intermediate crude was trading 3.4% up at $88.77 per barrel when reports last came in.
2: चौथी भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में आयोजित हुई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने इस बैठक में हिस्सा लिया. इस दौरान डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमी कंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक तथा उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई. वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी बातचीत हुई है. बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सशक्त करने पर बल दिया गया है. और अब सराफा बाजार की बात करें तो भारत में 24 कैरेट सोना आज 2.1% के उछाल के साथ 157,080 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था और चांदी 3.7% ऊपर चढ़कर 237,766 रुपए प्रति किलोग्राम पर थी. एसपी भारतीय सराफा बाजार में गोल्ड और सिल्वर पर जो उछाल आया इस पर आप क्या कहेंगे?
0: देखिए, एक तो अर्जुन ने जैसे पहले बताया डॉलर का वीकनेस, जो ट्रेजरी में भी डिक्लाइन था तो जिस वजह से डॉलर वीक चल रहा था डॉलर इंडेक्स, तो गोल्ड में उछाल आना स्वाभाविक था. और दूसरा, गोल्ड एक जो इंटरनेशनल गोल्ड प्राइसेस है वो 4000 का लो स्तर छू के वापस एक रीबाउंड आया. जो सेंट्रल बैंक्स है वापस वो दे आर इन द बाइंग स्प्री, तो एक बढ़त आई है जो मैं समझता हूँ कि बरकरार रह सकती है. और गोल्ड का जो पहले ये 5500 का एक बेंचमार्क बना चुका है ग्लोबल लेवल पे, 5500 और डॉलर पर ट्रायंस, तो अभी 4500 है तो काफी स्कोप है. लेकिन यहाँ पे भी कंसोलिडेट करता है तो काफी ऊपर है.
2: डॉक्टर एसपी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: जी शुक्रिया, थैंक यू.
1: And before we close, a reminder of the headlines. Benchmark domestic stock market indices rebound. Sensex jumps over 600 points. Nifty settles above 24,200. India's core industries grow by 5.4% in July this year on an annual basis. And global crude oil prices rise over 3%. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.
3: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम गीत मेरे मनमीत में आपका स्वागत है अभी आपके साथ है आपका दोस्त शमीम

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। कोविड महामारी और पश्चिम एशिया संकट का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल सरकार की कामकाज की संस्कृति का हिस्सा बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बेहतर इस्तेमाल की भी बात कही। उन्होंने कहा कि AI के साथ मानवीय विशेषज्ञता और निगरानी भी जरूरी है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत जाम्बिया के साथ अपने मजबूत और बहुआयामी संबंधों को बहुत महत्व देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत जाम्बिया संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति हिचिलेमा के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। नई दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। एक बड़ी सुंदर सी बात है कि दिन भर सबके हिस्से की चिंता करते करते कभी अपने हिस्से का आसमान भी देख लिया कीजिए। हर रिश्ता जरूरी है मगर खुद से जो रिश्ता है वो सबसे पुराना है। किसी के चले जाने से या किसी के ना होने से हमारी कहानी खत्म नहीं होती। कुछ लोग एक चैप्टर की तरह होते हैं पर वो पूरी किताब नहीं होते और कुछ मुलाकातें प्रेम से अधिक एक सीख भी दे जाती हैं। रात इसलिए खूबसूरत है कि यह दिन की थकान नहीं अपने भीतर लौटने का बहाना देती है। अपने सपनों को उम्र की चौखट पर मत रोकिए। जिस दिल ने सबको संभाला है उसे भी सहलाने का हक है। कल फिर नई सुबह होगी मगर आज की रात भी आपकी है। कहते हैं ना कि सबको बांटते रहे हम उम्र भर अपनी रोशनी। सबको बांटते रहे हम उम्र भर अपनी रोशनी। एक दिया अपने लिए भी जलाना चाहिए। एक दिया अपने लिए भी जलाना चाहिए। और अगला गीत फिल्म का नाम है दयावान। आइए सुनते हैं ये गीत।

एक बात जो अक्सर हम दोहराते हैं और लगभग हर तीन चार कार्यक्रम के बाद हम आपसे ये साझा करते हैं कि इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है प्रेम को लिखना और सबसे आसान काम भी होता है प्रेम को लिखना। वो कहते हैं कि प्रेम को हम जितने भी

शब्द दें वो कम ही पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारी जैसी फीलिंग होती है, हम जैसा महसूस करते हैं, हम वैसा ही लिखते हैं। प्रेम केवल किसी के साथ रहने का नाम नहीं, कभी कभी दूर रहकर भी कोई बहुत करीब महसूस होता है। और सच्चा प्रेम आपको छोटा नहीं करता, बल्कि वो हर दिन आपको संवारता है, बेहतर बनाता है। वो आपके सामने आपके सपनों से ईर्ष्या नहीं करता, उन्हें उड़ान देता है, पंख देता है। जहां अधिकार बहुत हो, समझ कम हो, वहां रिश्ता धीरे धीरे करके बोझ बनता चला जाता है। जहां सम्मान हो, वहां साधारण सी शाम भी बहुत खास बन जाती है। किसी का भी हाथ पकड़ना, किसी रिश्ते में होना बहुत आसान है, पर उस मन के बदलते मौसमों को समझना बहुत कठिन भी होता है। इसलिए प्रेम में साथ से पहले संवेदना का होना जरूरी है, समझ का होना जरूरी है, क्योंकि सुंदर रिश्ता वही है जिसमें दोनों अपनी पहचान बचाए रखें, दोनों अपने सम्मान को संभाल सकें। और रात के इस पहर सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रेम मांगता कम है, संवारता बहुत है। तो कहते हैं कि वो प्रेम कैसा जो मुझे मुझसे ही दूर करे, वो प्रेम कैसा जो मुझे मुझसे ही दूर करे, सच्चा हो तो मेरी उड़ान में भी साथ चले, सच्चा हो तो मेरी उड़ान में भी साथ चले। आप सुन रहे हैं निशिगंधा, और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। अगला गीत सुनेंगे, फिल्म का नाम है प्रेम रोग, और आवाज है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। और निशिगंधा में अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नीला आकाश, आवाज है आशा भोसले और मोहम्मद रफी की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

बड़ी पुरानी सी बात है या यूं कहें कि पुराने लोग कहा करते थे कि हर इच्छा का पूरा हो जाना जरूरी नहीं, कुछ अधूरी चाहतें हमारे भीतर रहकर हमें भीतर से समृद्ध करती हैं। जो नहीं मिला उसके लिए खुद को कभी दोष नहीं देना चाहिए। शायद जिंदगी आपको किसी और रास्ते के लिए बचा कर रखती है। हर बंद राह हार नहीं होती। कभी कभी बंद रास्ते जो हैं वो ये बताते हैं कि अपनी दिशा को बदल लेना चाहिए। रात में बीते हुए सपनों को अगर हम याद करेंगे और याद करके हमें वहां ठहरना नहीं है बल्कि सुबह उन्हें नए रूप में जीने की कोशिश भी करना है। दिल को केवल पाने की आदत मत डालिए, बदलते रास्तों पर चलना भी सीखिए, क्योंकि जिंदगी की खूबसूरती

सिर्फ मंजिल में नहीं उस सफर में भी है जो हमें अपने करीब लेके आता है। कहते हैं कि कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी कमाल करते हैं, कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी कमाल करते हैं। ये उम्र भर हमें नए सवाल देते हैं, ये उम्र भर हमें नए सवाल देते हैं। अगला गीत, फिल्म का नाम है सागर, आवाज है लता मंगेशकर और किशोर कुमार की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

वो अभी हमने कहा ना कि कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी कमाल करते हैं, कुछ ख्वाब अधूरे रहकर भी कमाल करते हैं, ये उम्र भर हमें नए सवाल देते हैं, ये उम्र भर हमें नए सवाल देते हैं। बात अगर हम प्रेम की करते हैं कि प्रेम को लिखना मुश्किल है और प्रेम को लिखना सबसे आसान भी है, तो जनाब अगर बात प्रेम की है तो हम इंतजार को कैसे भूल जाएं? पर इंतजार की बात करेंगे तो हम ये नहीं कहेंगे कि आप उम्र भर इंतजार का दामन थाम कर बैठे रहिए। जी नहीं, जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड बना ली है हमने, इतनी मुश्किल बना ली है, ऐसे में किसी के संदेश का, किसी के आने का, किसी के मिलने का इंतजार करते करते कभी भी अपने जीवन को इंतजार मत बनाइए। जिसे आना होगा वो रास्ता ढूंढ लेगा, जिसे रहना होगा वो वजह नहीं रिश्ता चुनेगा, और जिसे जाना होगा उसे रोक कर भी आप कुछ नहीं पाएंगे। प्रेम में प्रतीक्षा सुंदर है, लेकिन अपनी पहचान खो देना कभी भी सुंदर नहीं है। किसी की याद को अपने दिन की रोशनी बनने दीजिए, पर पूरी दुनिया नहीं। अपनी मुस्कुराहट को किसी जवाब का मोहताज मत बनने दीजिए। कभी कभी रात को अपनी बनाइए और अपने फोन से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए। अपने दिल के पास बैठिए, खुद के साथ बैठिए और अपने मन की आवाज को सुनिए। आपका दिल आपसे क्या कहना चाहता है, क्या बातें करना चाहता है? शायद वहां कोई ऐसा उत्तर छिपा हो, कोई ऐसा जवाब छिपा हो जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे, पर आपको वो जवाब नहीं मिल रहा था। और सही कहा गया है कि जिसे आना था वो राह बनकर आ गया, जिसे आना था वो राह बनकर आ गया, मैंने खुद को पुकारा तो अपना साथ मिल गया, मैंने खुद को पुकारा तो अपना साथ मिल गया। आप सुन रहे हैं निशिगंधा।

अशकों की तेरे वो बयानी चाहते हैं, अशकों की तेरे वो बयानी चाहते हैं, दिलचस्प सी कोई कहानी चाहते हैं, दिलचस्प सी कोई कहानी चाहते हैं। वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दे कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी कि 1 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 1:10 पर। कार्यक्रम होगा गीत सुहाने। छोड़े जाते हैं एक प्यारे से गीत के साथ। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: Zubair. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। कोविड महामारी और पश्चिम एशिया संकट का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अलग अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल सरकार की कामकाज की संस्कृति का हिस्सा बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI के बेहतर इस्तेमाल की भी बात कही। उन्होंने कहा कि AI के साथ मानवीय विशेषज्ञता और निगरानी भी जरूरी है। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक LR बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जाम्बिया के राष्ट्रपति हाकाइंडे हिचिलेमा को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत जाम्बिया के साथ अपने मजबूत और बहुआयामी संबंधों को बहुत महत्व देता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे भारत जाम्बिया संबंधों को और मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति हिचिलेमा के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूत कर बनाने पर बैठक की। बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, शिक्षण संस्थानों को बेहतर बनाने और देश के छात्रों के लिए नए अवसर बढ़ाने से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने कहा कि इन क्षेत्रों में सुधार के लिए सरकार की योजनाओं पर आगे काम किया जाएगा। नई दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने मलेशिया के जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप की जोड़ी को 21-23, 21-19, 21-17 से हराया। अब उनका मुकाबला तीसरी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत सुहाने लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

आप सुन रहे हैं निशिगंधा और निशिगंधा में आपके साथ हूं मैं जयती। कुछ बीती बातें रात में अचानक याद आ जाती हैं। बहुत बार ऐसा सबके साथ होता है, तो जो बातें याद आ जाती हैं और आकर मन में घर बनाने लग जाती हैं, उनसे लड़ाई मत कीजिए, उन्हें एक अनुभव की तरह जीवन में शामिल कर लीजिए। हर गलती अपराध नहीं होती, कई बार वो हमारे जीवन में एक सीख छोड़ जाती है। जिस रास्ते ने हमें गिराया, उसने ही हमें चलना भी सिखाया। इसलिए बीते हुए अतीत को सजा बनाकर रखना सही नहीं होता, उसे अपनी समझ की किताब का एक पन्ना बनने देना चाहिए, ताकि जब कभी हमारा मन भटकने लगे या ऐसा लगे कि हम फिर से वही गलती करने जा रहे हैं, तो अतीत के उस पन्ने को खोलकर हम जीवन की सीख को दोहरा सकते हैं। जो चला गया, उसके पीछे अपना आज क्यों खोना है? आने वाला कल हमारे इंतजार में खड़ा है, और कभी कभी तो दरवाजा बंद होना भी रास्ता बदलने का संकेत होता है, और कभी किसी रिश्ते का अंत अपने प्रति लौटने की शुरुआत भी होती है। आज की रात खुद से बस इतना कहिए, मैं बीते कल से बना हूं, मगर मेरा भविष्य अभी बाकी है। जो छूट गया उसे किस्मत का नाम दे देना, जो छूट गया उसे किस्मत का नाम दे देना, जो मिल रहा है उसे दिल से संभाल लेना, जो मिल रहा है उसे दिल से संभाल लेना। और अगला गीत, फिल्म का नाम है लव स्टोरी, आवाज है अमित कुमार और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत और फिर करेंगे आगे बहुत सारी बातें।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और गीत सुहाने में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नगीना, आवाज है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

कहते हैं कि उम्र कभी सपनों की उम्र तय नहीं करती। कभी-कभी 45 और 50 की उम्र में भी मन 20 साल की तरह खिल उठता है। और कभी एक नई किताब

एक यात्रा या एक दोस्ती पूरे जीवन की दिशा बदल देती है। लोग क्या कहेंगे, इस सवाल ने न जाने कितने सपने रोक दिए। जबकि लोग आज कुछ कहेंगे, कल किसी और बात में लग जाएंगे और आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी, हमें और आपको ही जीनी है। इसलिए देर से शुरू होने वाली खुशी को भी खुशी समझकर जीवन में शामिल करते चलना चाहिए। नई शुरुआत के लिए जनाब जीवन में कभी कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता, बस एक भीतर सच्ची इच्छा होनी चाहिए। और रात का जो ये पहर है, ये उसी इच्छा को जगाने के लिए काफी है कि हमें अगर जीवन में कुछ भी अच्छा करना है, कोई अच्छी सी प्लानिंग कर रहे हैं, तो हमें उस पर विचार करने का ये रात मौका देती है। उम्र ने पूछा अब कहां से ख्वाब लाओगी, उम्र ने पूछा अब कहां से ख्वाब लाओगी, दिल ने हंसकर कहा जहां चाह होगी राह वही होगी, जहां चाह होगी राह वही होगी। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है प्रोफेसर, आवाज है आशा भोसले और लता मंगेशकर की, तो आइए सुनते हैं ये गीत।

तुमसे ही महकी मध्यम फिजाएं हैं, तुमसे ही महकी मध्यम फिजाएं हैं, तुम फूल हो तुम दुनिया मेरी, तुम्हारे रंगों में रोशन तुम्हारी खुशबुओं में तर मैं, कभी कभी तुम में खुद को तलाशता हूँ, जबकि मेरी और तुम्हारी दुनिया में बस तुम ही तुम हो हर जगह, तुम में खुद को ढूंढता ये मन डरता है कि खुद के तलाश में दूर कहीं निकल ना जाए, तुम में महका तुम रंग निखरा ये मन तुम्हारा ही है, मगर जब तक तुमने संजोए रखा इसे भी किसी मुस्कुराते फूल की तरह, किसी मुस्कुराते फूल की तरह। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कभी कभी और आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की।

और ये वक्त आ चला है कि आपको याद दिला दें कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुनेंगे एफएम गोल्ड पर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। हमारी और आपकी मुलाकात होगी 2:10 पर। कार्यक्रम होगा रात सुरमई। छोड़े जाते हैं आपको एक प्यारे से गीत के साथ। फिल्म का नाम है प्रिंस, आवाज है मोहम्मद रफी की। तो आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालय

0: और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूस के बड़े हवाई हमलों में 16 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए हैं। हमले में अस्पताल, स्कूल, रिहायशी इमारतों और कई गोदामों को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने हवाई सुरक्षा मजबूत करने के लिए दूसरे देशों से और पैट्रियट मिसाइलें देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इन मिसाइलों की जरूरत बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव के लिए है। नई दिल्ली में जारी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने मलेशिया की जुनैदी आरिफ और रॉय किंग याप की जोड़ी को 21-23, 21-19, 21-17 से हराया। अब उनका मुकाबला तीसरी वरीयता प्राप्त चीन के लियांग वेई किंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने जापान की रिन इवानागा और की नाका निशी को 21-16, 21-12 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। अगले दौर में उनका सामना चीन की जिया यीफेन और झांग शू शियान से होगा। नीदरलैंड्स के एम्स्टलफेन में FIH महिला हॉकी विश्व कप में कल भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments universities, and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on

कहते हैं लोग क्यों किसी पर इतना झुक गए, कहते हैं लोग क्यों किसी पर इतना झुक गए, दिल हंस के बोला यह तो बस अंजाम दे गया, दिल हंस के बोला यह तो बस अंजाम दे गया। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई लेकर आपके साथ हूं मैं जयती। सभी सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। और रात सुरमई में पहला गीत एसपी बाला सुब्रमण्यम और आशा भोसले की आवाज में फिल्म सागर से आप सभी के लिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर. रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती. तुम यदि कभी लिखो तो पूरा आकाश मत लिखना. तुम यदि कभी लिखो तो पूरा आकाश मत लिखना. न ऋतुओं का हाल, न भीतर उतरती किसी अनकही पीड़ा का वृतांत. केवल इतना करना कि कागज के एक कोने पर अपना नाम रख देना, जैसे कोई दीपक दूर पहाड़ी पर रख दिया गया हो और भटके हुए पथिक को दिशा मिल गई हो.

वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए, वो सामने थे मगर आंख भर के देख न पाए, दिल के बीच कई फासले बेनाम निकले, दिल के बीच कई फासले बेनाम निकले। कभी तो हमने भी रिश्तों को हल्के में रखा, कभी तो हमने भी रिश्तों को हल्के में रखा, कभी तो उनके भी अंदाज कुछ नर्म निकले, कभी तो उनके भी अंदाज कुछ नर्म निकले। कहां तक उन पर रखे बेरुखी का सारा हिसाब, कहां तक उन पर रखे बेरुखी का सारा हिसाब, हमारे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले, हमारे हिस्से में भी कुछ जवाब कम निकले। और अब जो गीत आप सुनेंगे, आवाज है लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आपके साथ।

ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। रात सुरमई में आपके साथ हूं मैं जयती। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है कभी कभी, आवाज है मुकेश और लता मंगेशकर की। तो आइए सुनते हैं ये गीत।

सीढ़ियों से भी प्रेम करता हूं जिन पर चलकर तुमसे मिलने आया करता था। मैं उन सीढ़ियों से भी प्रेम करता हूं जिन पर चलकर तुमसे मिलने आया करता था, और आज उस खिड़की से भी जिसके बाहर देखती थी तुम्हारी उदास आंखें। मुझे अब भी उस अंधेरे से प्रेम है जिसके उजालों में चलकर पहुंचता था तुम्हारे पास। मैंने उन सारी चीजों से प्रेम किया जो तुम्हारे हाथों से छुई गई थी कभी न कभी, जैसे दीवार, काजल लगा आईना, कपड़े सुखाने की रस्सियां, कमरे की चाबियां, कमरे की सारी खूंटियां जहां हमने अपनी प्रार्थनाएं लटकाई थी कभी। मैंने अलमारी में लटके उन सारे हैंगर्स से भी प्रेम किया जिनमें सफेद झाग वाले सर्फ की तरह महकते थे तुम्हारे हाथ। मैंने उन सारी चीजों से प्रेम किया जिन्हें तुम्हारे तलवों ने छुआ था, जैसे पृथ्वी, जैसे यह सारा संसार। इस तरह मैंने तुम्हारी हरेक चीज से प्रेम किया तुम्हारे प्रेम में तुम्हारे लिए। और अब जो गीत आप सुनेंगे, फिल्म का नाम है नगीना, आवाज है अनुराधा पौडवाल की।

और वक्त आ चला है आपसे विदा लेने का। तो फिर मिलने के वादे के साथ और एक प्यारे से गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया और आवाज है लता मंगेशकर की। साथ ही आपको याद दिला दे कि अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो मुझे अनुमति दीजिए, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं

0: पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन, ICT। ये आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने अगले दो दिनों के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तूफान का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में कल भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। ग्रुप डी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराया, जबकि चीन और इंग्लैंड के साथ दो मुकाबले ड्रॉ रहे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी गुप्ता। Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges and implementation issues. Cabinet secretaries, secretaries of key ministries and departments and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Minister of Defense, Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on Prime Minister Narendra Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense defence sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defence Minister

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और समय हो गया है प्रोग्राम हमराही का। मैं हूं आज आपके साथ आपकी दोस्त भारती और आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम हमराही की इस गीत के साथ।

रात जितनी शांत होती है दिल उतना ही अपने करीबियों को महसूस करता है कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों की जरूरत नहीं होती बस उनका साथ होना ही दिल को सुकून दे जाता है जैसे चांदनी रात में हवा का धीरे से गुजरना बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह जाना

साथ का मतलब केवल पास रहना नहीं बल्कि जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का हाथ थामे रहना है खुशियों में साथ मुस्कुराना और मुश्किल घड़ी में बिना कहे हिम्मत बन जाना शायद यही सच्चे साथ की खूबसूरती है

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

मोहब्बत शायद किसी को अपना बनाने का नाम नहीं बल्कि उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेने का नाम है जहां शिकायतों से ज्यादा समझ हो अधिकार से ज्यादा सम्मान हो और शब्दों से ज्यादा एहसास हो वही मोहब्बत अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में होती है

कुछ भावनाएं गिनी नहीं जाती, उन्हें बस महसूस किया जाता है। प्यार भी उन्हीं एहसासों में से एक है, जितना बांटें उतना ही गहरा होता जाता है।

हैं कभी दूरियां, लेकिन सच्चा अपनापन दूरी से खत्म नहीं होता। कई बार इंसान पास होकर भी दूर होता है और कई बार दूर होकर या दूर रहकर भी हर धड़कन में मौजूद रहता है।

तो आज की इस नर्म सी रात में उन लोगों को याद कीजिए जिनकी मौजूदगी ने आपकी जिंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बनाया है। कुछ रिश्ते चांदनी जैसे होते हैं, चाहे रात कितनी भी गहरी हो उनकी रोशनी दिल तक पहुंच ही जाती है। आप जहां भी हो खुश रहें और अपने रिश्तों में प्यार और विश्वास और अपनापन यूं ही बनाए रखें। मैं आपसे ले रही हूं अनुमति, जल्द मुलाकात होगी, यानी मुलाकात होगी 4:10 पर कार्यक्रम अरुणिमा में। तब तक के लिए मैं आपसे ले रही हूं अनुमति। कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में देश के बुनियादी ढांचे, संपर्क, सुरक्षा, विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है। श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया। उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सकें। उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया। जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने, खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की भावनाओं पर भी चर्चा की। जापान के रक्षा मंत्री ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग में हुई प्रगति की जानकारी दी और संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा है कि इस निर्णय से लद्दाख के दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी। श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में

0: पांच सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी।
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: भारत आज पुणे में 12वीं ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे। बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार, सहयोग और परिवर्तन, ICT। यह आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों की उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, भविष्य के नेटवर्क, साइबर सुरक्षा, क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने अगले दो दिन के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तूफान का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। दिल्ली में आज हल्की बारिश के साथ बादल छाए रह सकते हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना चीन की लियांग वेई कैंग और वांग चांग से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चीन की जिया यीफान और झांग शूशियान से भिड़ेंगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security and external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Highlighting the importance of informal interaction and building team spirit among officers, Mr. Modi called for greater engagement between government departments, universities, and young people to bring fresh perspectives in policy making. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges, and implementation issues. Cabinet secretaries, secretaries of key ministries and departments, and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Minister of Defense Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on Prime Minister Narendra Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. Prime Minister Modi also recalled his detailed discussion with Japanese counterpart Sanae Takaichi during a recent visit to India for the 16th India-Japan Annual Summit in July this year. Mr. Modi also appreciated the steady momentum in defense collaboration between India and Japan. Sharing a social media post, Mr. Modi said that they had an excellent conversation on deepening defense and security ties between India and Japan. The Prime Minister noted that the special strategic and global partnership between the two nations is an important anchor for peace, stability and prosperity in the

एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूं। समय हो गया है प्रोग्राम अरुणिमा का और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त भारती। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की फिल्म भीगी पलके के गीत के साथ। गीत को अपनी आवाज से सजाया है किशोर कुमार ने। गीतकार एमजी असमत, संगीतकार जुगल किशोर और तिलक राज।

अभी आपने गीत सुना फिल्म संगम से मुकेश, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर की आवाज में। गीत का शैलेंद्र, संगीत का शंकर जयकिशन। आगे बढ़ते हैं, अगला गीत सुनते हैं फिल्म काला पत्थर से लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर और उनके साथियों की आवाज में। गीतकार साहिर, संगीतकार राजेश रोशन।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और समय है प्रोग्राम अरुणिमा का. आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं अगला गीत फिल्म खुदगर्ज से नितिन मुकेश की आवाज में और साथ में मोहम्मद अजीज, संगीतकार राजेश रोशन.

अभी आपने गीत सुना फिल्म कुर्बान से अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाज में। समय हो गया है कार्यक्रम के आखिरी गीत का। गीत है फिल्म लम्हे से लता मंगेशकर इलार उनकी आवाज में, गीतकार आनंद बख्शी। और इसी गीत के साथ छोड़ के जा रही हूँ आपको। जल्द मुलाकात होगी यानी 5:10 पर फिर से आऊंगी लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए अनुमति और गीत के बाद आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी के में समाचार।

0: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सचिवों के साथ तीसरी उच्चस्तरीय बैठक की बैठक में देश के बुनियादी ढांचे संपर्क सुरक्षा विदेश नीति और सुशासन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से देश के भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूरगामी योजना बनाने को कहा उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है श्री मोदी ने डेटा के सही इस्तेमाल पर जोर दिया और इसे देश की महत्वपूर्ण संपत्ति बताया उन्होंने कहा कि विभागों के बीच सोचने और काम करने के तरीके में सुधार होना चाहिए प्रधानमंत्री ने सरकारी विभागों विश्वविद्यालयों और युवाओं के बीच बेहतर संवाद पर जोर दिया ताकि नीतियां बनाने में नए विचार शामिल हो सके उन्होंने देश के रक्षा उद्योग को मजबूत बनाने और उसे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाने पर भी बल दिया जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की बैठक में भाजपा और जापान के बीच भारत और जापान के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा हुई प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में जापान की कंपनियों और स्टार्टअप्स के साथ मिलकर काम करने खासकर रक्षा उपकरणों के विकास और उत्पादन में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर भी चर्चा की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित करने को मंजूरी दे दी है गृह मंत्री अमित शाह ने कल सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी घोषणा की उन्होंने कहा कि इस निर्णय से लद्दाख के दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों के लिए न्याय तक पहुंच आसान होगी श्री शाह ने कहा कि सरकार लद्दाख के सर्वांगीण विकास और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है भारत आज पुणे में 12वें ब्रिक्स संचार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा बैठक की अध्यक्षता संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करेंगे बैठक का विषय है लचीले भविष्य के लिए नवाचार सहयोग और परिवर्तन ICT यह आयोजन ब्रिक्स सदस्य देशों को उभरती प्रौद्योगिकियों डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना भविष्य के लिए नेटवर्क साइबर सुरक्षा क्षमता निर्माण और समावेशी डिजिटल कनेक्टिविटी पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की है हमारे संवाददाता ने बताया कि यह समिति पिछले महीने नई दिल्ली के जंतर मंतर और देश के अन्य जगहों में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के आरोपों की स्वतंत्र जांच करेगी
1: समिति में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायालय

0: न्यायाधीश रविशंकर झा, दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश शैलेंद्र कौर, सीबीआई के पूर्व निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और मेघालय के सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशक एलआर बिश्नोई भी शामिल होंगे। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायाधीश जॉय माल्या बागची और न्यायाधीश वी मोहना की खंडपीठ ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच समिति कुछ मुद्दों पर प्राथमिकता के आधार पर काम करे, जिनमें सबसे अहम मुद्दा महिला प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लक्षित हिंसा और छेड़छाड़ की कथित घटनाओं से जुड़ा है। अदालत ने समिति से कहा कि वो मुद्दों का लगातार और समय समय पर आकलन करे और अपनी अंतरिम रिपोर्ट समय पर सौंपे। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: और खेलों में, नई दिल्ली में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में आज पुरुष और महिला डबल्स के क्वार्टर फाइनल मुकाबले होंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना चीन की लियांग वेई किंग और वांग शांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चीन की जियाई फान और झांग शू शियान से भिड़ेंगी। उधर नीदरलैंड्स के अम्स्टरडैम में FIH महिला हॉकी विश्व कप में कल भारत और इंग्लैंड का मुकाबला गोल रहित बराबरी पर रहा। इस ड्रॉ के बाद भारतीय टीम टूर्नामेंट के अगले दौर में पहुंच गई है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी आज मूसलाधार बारिश की संभावना है। विभाग ने अगले दो दिनों के लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक के साथ तूफान का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi chaired the third high-level meeting with secretaries to the Government of India at his residence yesterday and discussed the future action agenda of ministries and departments dealing with infrastructure and connectivity, security, external affairs and governance. He urged secretaries to think with a long-term perspective on how the country's future should be shaped. Calling for greater interoperability and effective use of data, Mr. Modi noted that data is a national asset and a resource for the future. He also emphasized the need to further strengthen the country's defense industry and make it more competitive at global level. During the meeting, the secretaries shared their experiences on sectoral priorities, emerging challenges, and implementation issues. Cabinet Secretary, secretaries of key ministries and departments, and senior officials from the Prime Minister's office attended the meeting. Japan's Defense Minister Shinjiro Koizumi, who is on an official visit to India, called on Prime Minister Narendra Modi yesterday. During their meeting, Mr. Modi shared his vision for further strengthening the special strategic and global partnership between India and Japan and highlighted the importance of India-Japan defense and security cooperation in furthering peace, stability and prosperity in the Indo-Pacific and beyond. The Prime Minister outlined opportunities for Japan to partner with Indian companies and startups in the defense sector, particularly for co-development and co-production under the aegis of Make in India. Defense Minister Koizumi briefed Mr. Modi about the progress in bilateral defense cooperation and reaffirmed the Government of Japan's continued commitment towards deepening ties with India. India will host the 12th BRICS Communications Ministers meeting in Pune today. The meeting will be chaired by Union Communications Minister Jyotiraditya Scindia. It will bring together Communications Minister and senior representatives from BRICS member countries to deliberate on strengthening cooperation in information and communication technologies, ICTs, digital transformation, innovation and resilient digital infrastructure. The theme of the meeting is Innovate, Cooperate and Transform ICT for a Resilient Future. The event will provide a platform for BRICS member countries to exchange views on emerging technologies, digital public infrastructure, future networks, cybersecurity, capacity building and inclusive digital connectivity. Union Cabinet has approved the establishment of a bench of Jammu and Kashmir High Court in Ladakh. Union Home Minister Amit Shah disclosed this in a social media post. Mr. Shah said that the decision will significantly enhance access to justice for citizens living in remote areas of Ladakh by reducing the time required to avail themselves of the legal services they are entitled to. He added that government is fully committed to the all-round development of Ladakh and to ensuring constitutional safeguards. Prime Minister Narendra Modi has congratulated Hakainde Hichilema on being re-elected as the President of

एक बार फिर से हाजिर हैं, हाजिर हूँ मैं आपके साथ लेकर प्रोग्राम भोर सुहानी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और शुरुआत करते हैं प्रोग्राम भोर सुहानी की इस भजन के साथ, जिसको अपनी आवाज से सजाया है आशा भोसले और मोहम्मद रफी ने।

पंछियों से सीखिए, आसमान खुला हो तो उड़ान के लिए हिम्मत चाहिए, मंजिल की खोज होनी चाहिए, अपने सपनों को पंख दीजिए, क्योंकि रास्ते कितने भी अनजान हो, उड़ने का साहस रखने वालों के लिए आकाश कभी छोटा नहीं होता।

सुबह की पहली हवा जब चेहरे को छूती है तो लगता है जैसे प्रकृति हमें फिर से जीने का संदेश दे रही हो। हवा कहती है बीते कल की उदासी को पीछे छोड़िए और आज को नई उम्मीद के साथ अपनाइए। हर सुबह जिंदगी हमें एक नया अवसर देती है, बस जरूरत है उस अवसर को पहचानने की।